0: गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया।
1: तुद उपायक वेख परसन आया।
0: लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया।
1: जिसनु आप तुठा तन अमृत गुर ते पाया।
0: भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना।
1: अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना।
0: तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना।
1: शादी जिनी आप तहर वासना समाणी।
0: कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली।
1: चलाई ते चलो स्वामी और क्या जाना गुण तेरी।
0: जिंदू चलाहे तिवे चलहे जिना मार्ग पावे।
1: पाजन नाम लाए ही से हर हर सदा ते आवहि।
0: जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
1: नाम सच्चे साहिब जो पावे तिवे चलावहि।
0: एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सोनाया।
1: मन वस्या जंतर हूं लिखे आया।
0: एक फिर एक नेरे करे गल्ला गली कनै ना पाया।
1: शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया।
0: पवित्र होए से जना जिनी हर त्याया।
1: पवित्र गुरमुख जिनी त्याया।
0: पवित्र माता पिता कुटुंब सहज सियो पवित्र संगत सवाईया।
1: सुनदे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया।
0: कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया।
1: सहज न उपजै बिन सहज सहसा ना जाए।
0: ना जाए सहसा कतै संजम रहे कर्म कमाए।
1: सहसा उमड़ी न कत संजम धोता जाए।
0: मन तो वो शब्द लागो हर सियो रहो चित लाए।
1: नान गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसा बजाए।
0: जियो मैले बाहरों निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हारिया।
1: वड्डा रोग लगा मरण मनु विसारिया।
0: बेता में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जियो बेता
1: है। नान जन सच तजिया कूड़ी लागी तिनी जन्म जुए हारिया।
0: जियो निर्मल बाहरों निर्मल बाहरों तो निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी।
1: सोई पहुंचे नाही मनसा सच समाणी।
0: जन्म रतन जिनी खटिया पले सेवन जारे।
1: जन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले।
0: जेको सिख गुरु सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले।
1: चरण हृदय त्याय अंतरात्मा संभाले।
0: आप छठ सदा रहे पढ़ने गुरु बिन अवर न जाने कोई।
1: नाम सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए।
0: जेको कुरते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे।
1: मुक्त ना औरता कोई पुछो बवेकियां जाए।
0: अनेक जुगनी परम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए।
1: लाग चरणी सतगुरु शब्द सुना।

रूप कनि सुत कन पहलाए तुबारी खाए। नानक साए आदमी बदे जम पर जाए, महला दूजा महला पहला सबो सूत परम है। दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है, पाने आवे जाए। खाना पीना, खाना पीना।

प्रभु के सिमरन काल पर हरै, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरै, प्रभु सिमरत कछु बिघन न लागै, प्रभु के सिमरन अंधन जागै, प्रभु के सिमरन भाव न व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख न संतापै, प्रभु के सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद सिद्ध नाव निद, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ शिनानी, प्रभु के सिमरन दरगाह मानी, प्रभु के सिमरन होय सो भला, प्रभु के सिमरन सो फल फला, से सिमरै जिने आप समराए, नानक ताकै लागो पाए, प्रभु का सिमरन सबते उच्चा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु के सिमरन सबकी सूझै, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिदमाहे समाए, प्रभु जी बसै साध की दसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवाण, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रदान, प्रभु को सिमरे से बेमौता जी, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजी, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दे अल्ला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरै से परे उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै, प्रभु को सिमरै तिने आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिने निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिने अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन कबू न चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी, प्रभु के सिमरन निश्चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल बिघासन, प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सुख सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जन को प्रभ मया, नानक तिन जन शरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाई, हर सिमरन लग बेद उपाय, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीचे चहों कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल कारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसया बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ अष्टपदी, जय मात पिता सुतमीत न पाई, मनुहा नाम तेरा संग सहाई, जय महा भ्यान दूत जम दलै, तै केवल नाम संग तेरा चलै, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम किन माए उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे, सकल सृष्ट को राजा दुखी, हर का नाम जप तो सुखी, आला करोरी बंध न परै, हर का नाम जप निस्तरै, अनक माया रंग तिक नाम बुझावै, हर का

जिनकी आत सचीत रख नानक निभी नाल अष्टपदी रमैया के गुण जेत प्राणी गुण मूलते गुण दिष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भगन में जिने उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध भर जोबन भोजन सुख सूद बिरद प्याओ पुरसाख सैन मुख प्याओ बैठको दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लियो तो नानक सीजै जे प्रसादा रूपर सुख बसै सुत भरात मीत बंता संगत सहजे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावका मुला जे प्रसाद भोगे सब रसा सकल समग्री संग सत बसा दीने अस्त पाप करने तिरसनाथ सह त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक हर लियो प्रभ आपे आद अंत जो रखना हर त्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावै दस्य मूड़ा मन नहीं लावै जूठा कर सा सदा हजूरे तक वंदा जान तूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तुसै बसारै मुगद जान सदा सदाए भूलण हार नानक रखनार पार सदा सदाए भूलण हार नानक रखनार पार रतन त्याग कौड़ी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो शरणा सुअस्त्र कर मानै जो हुण सुदूर प्राणै छूट जाय तिसकै शर्म करै संग साहि तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्त प्रीत भस्म संग होए अंध कूप मैं पतत बिकराल नानक काढ लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक बचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब शनाय कस करे छपाया बार ज्ञान ध्यान शनान अंतर व्यापै लोभ सुहान अंतर अगन बार तन सुहा गल पात्र कैसे तरे था जाके अंतर बसे प्रभ आप उन्हां नूं तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गलियो ओढ़ निभावै सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गे लियो ओढ़ निभावै काम बुझारत पूजै डोरा निस्किये तो समझै भोरा काम बिसंपत गावै गुंग जतन करै तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू आस गवन करतार करना

जिसका अंतर आज मान सो नरक पातियो सवान जो जाने मैं जो बनवंत सो तविस्ता का जन आपस को करवंत कहा वे जन्म मरे बोजन फरमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकिया मुक्ता के सुख पावे धनवंता हो कर करवावे तन सुवान का संग न जावे बहुलस कर मान को ऊपर करे आस पल पितरता का विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं हुए जाए पसमंत किसी न बदे आप इंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा कमड़े मान जन नानक दरगी प्रवान कोड कर्म करे तारे शरम पावे सगले विरथार अणक बसया करे अंकार नरक सुर फिर फिरे उतार अणक जतन करे आत्म नहीं द्रवे हर दरगी को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निक न आवे सर्व गिरिंजा कमण होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब सुको सुख नाही कोए जब ये जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जुन मैं फिरता जब तारे को बैरी मी तब लग ने चलना ही चीत जब लग मुझ मगन संगमाए तब लग धर्म रा दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लाकुड़तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे भोग विख्या के करे न तृप्तावे खप कमरे बिना संदोग नहीं कुराजे सुपन मनोरथ विरथे सब काजे